धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेशन सेस्त का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जा आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार।

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओवर फोन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओवर फाउंड स्थानीय रेडियो, जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माइट मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से।

वाह क्या बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत आपको सुनाएं ओफर फावन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सही पिरात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओफर फावन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की नेगेटिव सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साथ पर ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओ फरफा हो हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर नीख दें एने सही फिल्म तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की मोहब्बतें में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहोन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहां भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं, और वीवी द्वारा वहां पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

फिल्म हंसते जख्म में से हमने निकाले हैं, तुम जो मिल गए हो। और रफी लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत उफ़ाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं? जी हाँ, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए मैंने भी नहीं सुने हैं। फिल्म आत्माराम ने से निकाल रहे हैं और रफ़ी साहब की आवाज़, जी नहीं, लता जी की आवाज़ में हम पेश करने वाले। इसे ध्यान से सुनिए, इस गीत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए ये गीत।

0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब ना गुजरेंगे। लता जी, मैं तो भूल ही गया था कि रफ़ी की आवाज़ भी इसमें है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुने हैं, 7-4-5 साल हो गया होगा, और शायद हमारे सहयोगी ने आपको सुनाया होगा, तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ।
1: दुनिया में जो ले हिम्मत से काम,
0: महेंद्र कपूर जी।

आपने सुने महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए कि बड़ा आदमी कौन है, हमने निकाल कर आपको सुनाए इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको तो ये गीत हमें यही बताता है कि सूट बूट पहन लेने से, टाई यानी जैकेट को ऊपर एक दास बांध लेने से, महंगा जैकेट पहनकर या कुछ सोने का चेन लटकाकर और बड़े गाड़ी में चलना, 70-80 हज़ार का गाड़ी में चलना, ही वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो दिल से है, किसी को चाहे, उनका दिल बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है। तो यही कि महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत इस तरह से आ रहा है, ये तो प्यार करने वाले सिखाते हैं कि कैसे प्यार

जी फिर उपासना में से निकाले हैं। हाँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ। लता जी और रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाएगा निगती एन सैफ तख। 1971 का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाहुन हिंदुस्तानी।

दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति ए ने सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

फिर हम मन मंदिर में से निकाले हैं निगित एन से बंधक का ये गीत 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्म में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 455 या 55, बहरहाल रौंद 45 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीब तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ हाँ तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं के सिलसिला हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर नेक दी फैफ सैफ दख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

0: तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है। मैथ्यू मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने
1: दोस्तों प्यार की प्यार भरी सॉन्ग आज हम आप लोग को और सुनाएंगे, कुछ शायरी भी आप लोग को हम आज सुनाएंगे और लवली लवली सॉन्ग फन यारन 89 tot en met en vanaf 80 90 95 के प्रोग्राम आज हम आप लोग को सुनाएंगे। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और मोहब्बत भरी प्यार भरी और दिल के धड़कन की और यानी कि बाती शायरी सुनाना है हमारा काम। और बात ये है दोस्तों कि इक्ष मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले, तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में घर। और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए और ये क्या है हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी प्यार भरी पैगाम।

होता सुन लो, आप लोग तो खुद सुना है हमारे दोस्तों, और कहते हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है। हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने कुछ कुछ पल तुझे भुला कर देखा है। और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, तुम रखो कदम जहां खुदा करे मैं वहीं जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत, तुम्हारी नजरों में हमने देखा है, कल की आवाज नेहिंदी ट्विंस का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी नजरों में हमने देखा और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों, कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम की मैं इश्क के जहर का आधी हो जाऊं। तो हम जाते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है, फिल्म का नाम है कयामत, अलका जी और कुमार शानू सोनू निगम, जिसमें काम किया है अजन देवगन।

और ये लड़की बहुत याद आता है, और ना सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को जब लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दितवास चौपन से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात ये है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रियों से इवेंट की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों कि कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम काश मैं भी पानी की एक घूंट होता, आई सनम काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं निघती निघन निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन दिन होंदत ए नेहन नेहन तक का दोस्मो। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का अमहता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अजनबी, अजनबी मुझसे मुझको इतना बता और अजमी अजनबी आपको क्या बताएंगे। अजनबी जो है वो आंख में देख को प्यार हो जाता। दोस्तों आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगी और इस फिल्म का नाम है दिस लव सॉन्ग और ये है फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था और अजय देवगन काजल ने इसमें काम किया है। उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत है हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की कहते हैं तेरे खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है। तुम्हारी खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है तो मेरी है और मैं तेरा हूँ बस यही आवाज आती है। उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों कुमार शानू और नाइटिंगेल लता मंगेशकर दिया मिर्जी अनुराधा पौडवाल।

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू नैतिल की लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है, और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते हैं, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, आओ मिलकर सुना जाए, देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

देखा तुझे तो हो गया दीवाना। और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं। और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बाहर प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर। नीखती नीखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं। फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी सी मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखिल होंदत और फिर शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारी प्यारी प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं कि हैं, और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, आई मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना फिल्म के नाम है। नेकति होंद नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है। इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना हम जॉनी वॉलकर दोस्तों, हेलेन काम किया है, और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

सुरीनामी लोबी सुनाई हमको अंदर से रेगी डांस हॉल के आवाज में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे में।

स्नेह उपाध्याय के आवाज में सुने कि पारासीटामोल के बारे में। पारासीटामोल मैंने लिफो मेंसे इस एन फेल गेब्रुक्ट पेनस्टिलर एन कोर्ट्स वरलागेंडे पेनस्टिलर। हेट इस गेस्किक फॉर बहांडलिंग फॉन मिल्ड टॉट मातिगे पेन।

कमी नहीं यारों की, बच के रहना दुनिया से, मोटिवेशन रैप सॉन्ग रियलिटी ऑफ फेक फ्रेंड्स। जिंदगी, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है मेरे दोस्त। हाँ, आप सोचेंगे क्या राज है जिंदगी, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो मेरे दोस्त, कल का भरोसा कभी

वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब बदल गया। जी हाँ, ये प्रकृति की हकीकत है कि वक्त के साथ सब बदल गया, जो अपना था वो पराया हो गया। जिंदगी जिंदगी की इस भीड़ में आज काफी इंसान अकेला हो गया। बात तो सही।

ये भी एक सुंदर सा लाइन है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है।

हाँ, हर समय के, हर पल के, हर चीज के यहाँ एक संगीत, उसे संगीत के पोइसी में उतार दिया जाता है, जो भी हो।

ये सागर का नाम मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये गीत आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं चला दी आपके लिए ताकि आप भी कैनस कर लो कि ये सब गीत भी है। कभी जीत तो कभी हार मिलेगी ये तो है ना, कभी जीत तो कभी हार मिलेगी, हर मोड़ पे एक पुकार मिलेगी, जो हिम्मत नहीं हारते कभी। हाँ वो आप भी है मेरे दोस्त जो आप सुन रहे हैं, हाँ आप हिम्मत हारने वाले नहीं है। जो हिम्मत नहीं हारते कभी उन्हीं की, उन्हें ही मंजिल पर, उन्हें ही मंजिल बार बार मिलेगी। जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, हर गम को भुला कर जी लो ना, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, आज को खोल के

Raymond Ramnarini kiss a watch me sune hum. Someday I see you again. Wacht, wacht ke moor pe aisa, wacht ke moor per aisa wacht aaya hai. हाँ सुनने वालों कि वक्त के मोड़ पर ऐसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबां पर आया है। ओहो ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर, ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर आज, हाँ आज ना जाने क्यों फूलों की खुशबू से रोना आया।

0: Nederlandse gewij, in Nederland zeggen wij hoe gaat het? In Germany they say danke. Frans में कहते हैं merci. हाँ हाँ ऐसे सभी देश का जो है ना भाषा वही इस गीत में धर देश है बता देश है. In China we say chichi. India में देश है धन्यवाद. और पाकिस्तान में we say शुक्रिया. ऐसे है कई अन्य देशों का बता दी है कि हु खातत वहाँ पे सभी भाषा में. दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं है. दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं. मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं. बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई. वक्त बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई. अंधेरे में दिया मिला. अंधेरे में दिया मिला पर वो भी जला नहीं.
1: के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी. क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे. जो खेल आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी. क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है. अब कितने भी होशियार हों कितने भी चालाक हों लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है. हर कर्म का हिसाब जरूर करेगा. दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं. इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें क्योंकि कर्म का हर उधार एक दिन चुकाना ही पड़ता है.

love for you goes on and on. मुझमें लाख बुराइयां होगी मगर मुझमें लाख बुराइयां होगी मगर मैंने किसी से अपने मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखा। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे। सच बोलकर कितने लोग गंवा दिया मैंने। दर्द और जिंदगी ऐसा साथ थे जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाए। जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाना हो।

0: जी हाँ मेरे दोस्तों, नदीम खान जी की आवाज़ में हमसे सुने, हम सब ने सुने कि किसी से मुझे प्यार हो। यस्तमनीर ओम वातर्त द्रिंकन द्रिंक वातर तरवेल उसित वातर द्रिंकन तरवेल उस्ताद कान स्खादलक सैन फोर यू गवरिख्तन एन नीरन। Lang drinken, langzaam, langzaam drinken. Niet doorslokken. Langzaam drinken geeft het lichaam de tijd om het water goed op te nemen. Lauw water op een lege maag in de ochtend. Het verwijdert gifstoffen uit het lichaam en versnelt het stofwisseling. Hou voldoende tijd voor en na de maaltijd. Drink niet te veel water direct na het eten, maar drink het pas na 30 minuten. Drink water voordat je dorst krijgt. Drink 8 tot 10 glazen water langzaam verspreid over de dag.
1: आज मैंने कुछ सोचा है।
2: कभी कभी ये काम भी करना चाहिए।
1: आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है।
2: मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है।
1: अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है।
2: और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है।
1: ये फाइनल है यार।
2: फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना
1: यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे।
2: क्या?
1: वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
2: मैं क्यों करूं?
1: अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। चाहे, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन?
2: देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर।
1: जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा।
2: घर तो तेरा होगा।
1: एक बीवी होगी।
2: तेरी होगी।
1: 7-8 बच्चे होंगे।
2: तेरे होंगे।
1: पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ।
2: यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली।
1: समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी मां होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा दे। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला?
2: साला नौटंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा।
1: सच?
3: अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर।
3: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
3: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
3: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
3: तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना
4: फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
3: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
4: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए।
5: Dit is geweldig. Diabetes hield me nooit tegen. Het zorgde alleen voor meer zorgen. Maar Omnipod 5 werkt samen met mijn sensor om automatisch insuline toe te dienen. Wat helpt om mijn waarde binnen bereik te houden. En het is waterbestendig. We gaan ervoor. Meer tijd om te leven als diabetesbeheer minder tijd kost. Maak kennis met Omnipod.
4: Je juwe en sharaab ki aadat to do din mein chhoot jaye.
3: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
4: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
3: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
4: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
3: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
4: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
3: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
4: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
3: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
4: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
6: कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ कर रहा हूं भैया, जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
7: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
8: वो
9: अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
6: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय।
7: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
6: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुकियो, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
3: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम क्यों बैठे हो?
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया, देखो।
6: मेरा दिल भर चुका।
3: देखा, देखा तुमने?
4: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
3: यूं कि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो
6: इसलिए मैं चांते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
7: कैसी मुसीबतें आएंगी?
6: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, When I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail,
10: बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
11: अरे मौसी हाँ कर दो नहीं तो ये जान दे देगा।
12: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी।
10: अरे गाँव वालों इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक दो तीन।
12: मौसी मौसी हाँ कह देना।
13: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
12: अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
13: हाँ कह दो मौसी।
12: हाँ जीरो ठहर जा मैं तैयार हूँ।
11: मौसी ने हाँ कह दी भाई नीचे आ जाओ आ जाओ।
10: मौसी से कौन शादी करेगा सालो। मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से
12: वीरू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब नीचे आ जाओ।
10: अरे गाँव वालों सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है बसंती भी तैयार है इसलिए मना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा।
0: कहते कि मौसी से कौन शादी करेगा, मैं तो बसंती के लिए आई हूँ। हाँ इसलिए मरना कैंसर, जीना है मेरे प्यारे जीना है।

0: सर, वो तो पहले ही से अटेंशन।
1: आप जानते जानते जानते हो, कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा।
2: Operatie Back to School. Jij, schoolspullen. We willen geen verrassingen.
1: Ham, Andrezen ke zamane ke jailer hain. Aaj kal ke jaileron ki tarah nahi, jo qaidiyon ko sudharne ki fikr mein lage rehte hain. Ham achhi tarah jante hain, tum log kabhi nahi sudhar sakte ho. Are jab hum nahi sudhar sake to tum kya sudharoge? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं, घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। ये क्या?
0: परिंदा हुजूर, कबूतर,
1: हमारी
0: कबूतर।
1: निकालो, अच्छा ना, जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो।
0: बड़ा अजीब आदमी है, जेलर का जासूस कौन है?
3: मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ,
0: हरिराम नाई।
4: हरिराम, अब तो ये मुझे भी निकाल दो।
5: सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू।
6: अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को?
7: काट दिया।
5: सुरंग बनाने को ये कोई 6-7 दिन में काम हो जाए।
6: सुरंग निकाल कहां से रहे हो?
5: बैंक नंबर 9 के बराबर से।
6: कहीं जेलर को पता ना चल जाए,
5: किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
6: आओ।
4: बस हो गया।
8: साहब।
9: आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो?
8: साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है।
9: आओ, जेल में सुरंग?
8: क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग?
6: यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे
9: हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई, हमारी जेल में सुरंग?

0: तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? तो ये है सुरंग बनाने का औजार।
1: जेल में आ चुका है।
2: हाँ,
1: बस दो चार दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को
0: हमारे जेल में पिस्तौल
1: जी
0: हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां, सिपाहियों
3: gezond. Kies echt. Kies
4: 3,
5: 2,
4: 1,
0: en Baki, hamare saath aa.

0: पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर।
1: चलो कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है।
2: पहला ऑर्डर कैंसिल। चार
3: अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट।
4: पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ।
5: अटेंशन, लेफ्ट हैंड।

0: trovato quel uomo.
1: Trovato quello?
2: Yes, sir.
0: Here, Jack. Here, happy star.
3: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना?
4: अरे कोशिश? ये थी कोशिश? जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दू तब ना, एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर हुआ, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
3: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
4: हाँ हाँ,
3: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
4: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि तूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
0: फिर क्या हुआ?
4: अरे फिर हो रहा क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने पिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, धटा धट धटा धट, बहुत मारा बहुत मारा।
0: फिर क्या हुआ?
4: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
0: क्या कहा?
4: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं, दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो, चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था, और हाँ बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से, ये थे माशाल्लाह पेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है।
0: सूरमा भाई।
4: हाँ भाई।
0: हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
4: 1000 रुपए?
5: हाँ हाँ 1000 रुपए।
4: अच्छा हाँ 1000 रुपए, अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे, वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो, ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
5: अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे।
6: कुछ डायलॉग आपके लिए पेश किया गया है और आगे में जो समय रहे तो जरूर से और भी डायलॉग आपके लिए यहाँ से हम पेश करेंगे।
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: Kijk, je vertrouwen kan bergen verplaatsen, maar als het breekt, dan verdwijnt niet alleen de kracht, maar ook de blik van wie je werkelijk ziet. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig, maar elke strijd brengt je dichter bij rust. Verhalen en dromen zijn wat voor bestaan, wanneer feiten stof en as zijn en vergeten. Er zijn dagen dat de zon niet opkomt in de lucht, maar in jezelf. En dat is genoeg om de wereld te laten stralen. Soms moet je breken om te ontdekken welke licht er al die tijd in je verborgen zat. Je draagt de stilte niet om te vluchten voor de wereld, maar om de wereld in jezelf te horen spreken. En soms moet je dwalen in de stilte om jezelf terug

0: मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं।
1: नाना पाटेकर जी की आवाज में उन्हीं के गीत ये गाए हुए है। एरस नीत खनुख रुमते इन ये खेस फॉर सोवेल सॉर्गन आस वर्ट्राउन। एरस नीत खनुख रुमते इन ये खेस voor zowel zorgen als vertrouwen. Jij moet beslissen wie er in je geest mag wonen. Kijte he, ki do talwaar, ik mayan me nahi reh sakta. Uit de scherven van het verleden, zorgvuldig bijeengerapt, ontstaat een mozaïek van wie ik nu ben. Eerst gebroken, daarna verweerd, toen geheeld en uiteindelijk weer compleet.

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मैजेंटा वेग 259 बाय ऑटो वरहुरबेद्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: हाँ, जुबा पे दर्द भरी दास्ता सुनेंगे हम राम नारायण शिवराम जी की आवाज में.

इतिहास कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, इतिहास कहता है, इतिहास जाने कि कल जो बीत गया, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज, ऐ मेरे दोस्त, तो हर रोज सुख

भाई मुकेश गोलाई के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ अलहदा आपके लिए यहाँ से पेश किया जाता है आज के तारीख में। ओ सुदामा जी ने कृष्ण श्री कृष्ण जी से कहा, सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हाँ कृष्ण जी के हंसकर कहा, कितनी मुस्कान है भी कृष्ण जी के ना। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है ना ए दोस्त, वहाँ दोस्ती कहाँ होती है।

सुहानी चांदनी रात, राम नारायण शिवराम जी के आवास में आपके लिए पेश किया जाता है मेरे दोस्त फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको हम बता दे और क्या बताना चाहती हूँ तो वो ये है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब, जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है जो, उसको कहते हैं खुश नसीब। यानी कि नसीब बदनसीब और खुश नसीब। तो आप इसमें से कौन वाला हो कि बदनसीब हो, खुश नसीब हो या नसीब वाला हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साज और संगीत में राम नारायण शिव राम जी के आवास में यहाँ से हमने श्रवण की है। श्री कृष्ण जी के वाणी, श्री कृष्ण जी की वाणी वो ये है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं ना, आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किए गए कर्मों का फल है।

0: बहुत खूब मुकेश चौलाई जी की आवाज़ में हमने श्रवण की है माई तेरी चुनरिया। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है, चमकते हैं चेहरे और कैमरे मुस्कुराहटें कैद करते हैं। मगर उसी भीड़ के पीछे एक इंसान खड़ा होता है ना फोटो में आता है ना मंच पर बुलाया जाता है। बस आंखों में नमी और होंठों में एक ही शब्द मेरा बेटा। उसने नहीं मांगी पहचान ना ही चाहा सम्मान। उसकी सबसे बड़ी जीत हमारा एक छोटा सा मुकाम। वो दिन में पसीना बहाता है और रात में ख्वाब बुनता है। हमें ऊंचाई पर देखने की हर रोज एक नई कोशिश करता है। जब हमें थकान होती थी तो वो हमें थाम लेता था लेकिन खुद कभी थमता नहीं, क्योंकि उसके सामने में हम होते थे। वो पिता है ना कुछ कहता है ना जताता है। मगर उसकी चुप्पी में पूरे ब्रह्मांड जितना प्यार समाया होता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

रेनी राम नारायणी और मुकेश चोलाई के आवाज में चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्रा में ये गीत गाया गया है मुकेश जी की आवाज में। कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, शुद्धता होती है विचारों से, आदमी तब पवित्र होता है।

जीना यहाँ मरना यहाँ, फिल्म मेरा नाम जोकर से निकाल दिया गया है राम नारायण सियोराम के आवाज में। प्रेम का वास्तविक अर्थ, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना, वही प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है।

हाँ अवश्य, ये सवाल तो उठता है कि कैसा तेरा संसार, छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ। जैसा जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, वैसा ही मोहब्बत तुम्हारे औलाद तुमसे करेगी। यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ का फर्क है।

रियाज अहमद अली के निर्देश में। मेरे प्यारे सुनने वालों, बुद्धि भक्ति बुद्धि से होती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं।

बाबला मेहता से हमने सुने सुने वालों ये सुंदर सा राखी स्पेशल यहाँ से आपके लिए आरंभ किया जाता है या आरंभ हो गए हैं आप ही के लिए। जैसे आपको पता है तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष पर आपको बहुत सारे बधाइयाँ हैं। कहते हैं भाई के जैसा प्यार ना हम किसी को कर सकते हैं ना कोई हमें कर सकता है। भाई बहन का प्यार बहुत पवित्र प्यार है। बहन की प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन के प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे कितनी भी दूर हो, वो चाहे कितनी भी दूर हो, पर प्यार कम नहीं होता। आपको रक्षाबंधन के बहुत सारे शुभकामनाएं पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। प्यारे सुनने वालों

स्टीवन बेन और श्रिया घोषाल से हमने सुने ये सुंदर सा रक्षाबंधन गीत। सुनने वालों, आप ही के लिए, बिल्कुल आप ही के लिए तोहफा के रूप में आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। रेशम के धागे का है ये मजबूत बंधन, रेशम के धागे का है ये मजबूत बंधन, माथे पर चमके चावल रोली और चंदन, प्यार से मिठाई खिलाए बहन प्यारी। सबसे निराले सबसे निराले सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा भाई, लड़ता झगड़ता पर प्यार भी उतना ही करता, हर हर खुशी में है मेरा प्यारा भैया, हर खुशी में है मेरा प्यारा भैया। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक से बधाई है।

सावन के रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा ये प्यार और ऐसा ये प्यार और। खुशियों का त्योहार है, कलाई पर रेशम का धागा है, बहन ने बड़े प्यार से बांधा है, बहन को भाई से रक्षा का वादा है।

है कि 1,000 में, जी हाँ 1,000 में आपकी और आपकी बहना है किशोरदास जी से हमने सुने। सुनने वालों, और फिल्म का नाम जिसे आपको पता है, नहीं पता है तो हम यहाँ से बता देते, हरे रामा हरे कृष्णा। अनोखा भी है, निराला भी है, तकरार भी है तो प्रेम भी है। बचपन की यादों का पिटारा है, भाई बहन का ये प्यारा रिश्ता है। रक्षा के पवित्र बंधन को सदा निभाए, अनमोल है बहन सदा स्नेह लुटाए। राखी की कीमत तुम क्या जाने, जिनकी बहनें नहीं होती उनसे पूछो।

बांधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। चंदन का टीका, रेशम की धागा, सावन की सौगात, बारिश के फुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार, बधाई हो आप सभी को रक्षाबंधन का ये

चे धागों का रिश्ता। फिल्म रक्षाबंधन से ये सुंदर सा गीत श्रिया घोषाल और अर्जित सिंह जी की आवाज में सुने हम। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, कच्चे धागों नहीं खुशियों की डोर का, खुशियों की डोर को बांधा है, भाई बहन की यारी पूरी जहां से प्यारी।

भरोसा है, कलाई पर रेशम का धागा है, बहन ने बड़े प्यार से बांधा है। रक्षाबंधन के दिन भगवान से बस यही दुआ प्रार्थना है, किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी, सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे प्यारा है भैया मेरा। विश्वास का धागा, प्यार का धागा, खुशियों का धागा, यादों का धागा, दोस्ती का धागा, मन का धागा, भाई की कलाई पर बहन ने प्रेम से बांधा। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक सुंदर सा गीत, वो उनके लिए जिसकी भाई बहुत दूर है।

जी हाँ, दिल छू जाने वाले गीत है जो लता जी से सुने। सुने वालों, मेरी भी स्टूडियो में आंख भर आई गला थोड़ा से। हाँ जी हाँ, उनको भी हम याद करते हैं जिनका भाई बहन, भाई बहन से दूर है या बहन भाई से दूर है, फिर भी आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले और दिल दिल में जरूर से आप उनको भी याद करें। मेरा भाई चंदा से भी प्यारा है, सूरज से न्यारा, माँ ने दिया जन्म मगर तूने ही उसे संवारा है। चंदन की लकड़ी फूलों का हार, अगस्त का महीना सावन की फुहार, भैया की कलाई बहन का प्यार, बधाई हो आप सभी को रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार। हमेशा रखना प्यार भरा व्यवहार, हमेशा रखना प्यार भरा व्यवहार, बधाई है भैया रक्षाबंधन का ये त्योहार। आसमान पर सितारे हैं जितनी, उतनी जिंदगी हो तेरी प्यारे भैया, किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी। बहन चाहे सिर्फ प्यार, बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती बड़ा उपहार, रिश्ते बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियों हासिल।

जी सुनने वालों, ये रक्षाबंधन सब त्योहारों में से भी बहुत बड़ा त्योहार है। हम देखे तो कविता पौडवाल जी की आवाज में हमने यहाँ सुने ये सुंदर सा गीत। ये गीत जो हम देखे तो निकनती फिरन तख्तख में ये रिलीज किया गया है। कच्चे धागों से बनी पका डोर के राखी, मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे ओ बहना, मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे ओ बहना, कैसे मैं ये दो लफ्जों में बताऊं। तू रहे खुशी, तू रहे खुश हमेशा, इस दुआ का साथ आज मैं सर को झुकाऊं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। काम जो आपको रेडियो को सही कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए 5 ऑन हिंदुस्तानी रेडियो से। हे अपना बनाने की कसम खाई है, मिस्टर सानू एंड अनुराधा पौडवाल दोनों के आवाज़ों में आप गीत को सुनेंगे।

फिल्म सदक का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन खफालक था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए।

उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए। साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों? हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रेज पिरो है, फ्लेस वेंकल है, तरकारी दुकान है, कपड़ा की दुकान है, लेकिन हिलक्स बिरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाउन हिस्सा से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए। ये हिलक्स बिरो के ज़रिए साथी ज़रूर मिल जाएगा, आपके करीब है, आपके करीब हम रहते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग साजन की बाहों में से मैं निकाल कर आपके लिए पेश किया। दोस्तों ऋषि कपूर एंड टब्बू इस फिल्म में काम किया। कभी ये चांद सितारे जमीन पर रहते हैं। आपको मालूम है कि ये जमीन पर कितने चांद सितारे रहते हैं? अगर मालूम नहीं है दोस्तों तो खोज कीजिए, यकीन कीजिए, देख लीजिए, तो आपको चांद सितारे जरूर नजर आएगा। जिंदगी को प्यार बिना।

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

वास्तव में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही होगे, लेकिन जो गीत मैं पेश करूँगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पौडवाल एंड मिस्टर सानू।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। एक बार आप सभी को फिर मैं वेलकम कहता हूँ, स्वागत करता हूँ।

मिस्टर केके का असली नाम है कृष्णा कुमार कुन्नत, लेकिन लोग इन्हें केके के नाम से जानते पहचानते हैं। इंडिया देश या बॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। दुख की बात यह है कि उनका मृत्यु हो गया, लेकिन उसका एक सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ, दिल सहीन दिल सहीन।

के कृष्णा कुमार कुन्नत। दोस्तों, कृष्णा कुमार कुन्नत ये न सिर्फ बॉलीवुड में लेकिन तमिल, तेलुगु, कनाडा, मलयालम, मराठी, बंगाल और गुजराती में भी गाना गाया है। रॉक म्यूजिक और साथ ही साथ पॉप और बॉलीवुड म्यूजिक पेश किया है। एक बेटा है कृष्णा और एक बेटी है तमारा। खुशी की बात यह है दोस्तों, जब निकली तक में वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा था तो इंडिया का टीम के लिए एक सॉन्ग के ने गाया और मैं सोचता हूँ आप सभी को एक गीत सुनाने के लिए। मिस्टर के या कृष्ण कुमार कुन्नत के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे।

इंडिया इंडिया दुख की बात यह है दोस्तों कि कृष्ण कुमार कुन्नटिया मिस्टर केके का मृत्यु 3 जून 2020 तक में हो गया। आपकी बार में चॉइस करके रखा हो द टाइगर ऑफ इंडिया पद्मश्री कुमार सानू और कविता कृष्णा मूर्ति दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे तुम पर हम आए तुम पर हम हाय अटके यारा तुम पर हम हाय अटके यारा।

हाय हाय झटके दोस्तों की बात टू द बीट ऑफ व्हाट झुमका रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म का नाम है रणवीर आलिया मियां बीबी प्रीतम और अमिताभ ये सभी फिल्म में काम किया है अरिजीत सिंह और साथियों के आवाज में आप गीत सुनेंगे।

वह झुमका रणवीर और आलिया इस फिल्म में दोनों मियाँ बीबी था। वैसे तो हकीकत में रणबीर कपूर इनका ये रणवीर है और रणबीर कपूर आलिया भट्ट का जीवन साथी या पति है। अब की बात दोस्तों ओढ़ी चुनरिया प्यार किया तो दंडा किया, ये प्यार किया तो दंडा किया एक पुराना फिल्म भी था। ये जो सॉन्ग आप सुनेंगे मिस्टर सानू और आलका के आवाज़ में, ये है न्यू सॉन्ग और न्यू फिल्म प्यार किया तो दंडा किया क्या।

सही बात सही बात सही बात, न सिर्फ प्यार किया तो दर न किया, जब प्यार किया तो वादा भी करना चाहिए। दोस्तों अब की बार आनंद भी एंड सबीर का म्यूजिक बैंक से म्यूजिक मशीन से मैं निकालता हूँ चीज बड़ी, नेहा कक्कर एंड उदित नारायण दोनों की मीठी आवाज में सुनेंगे।

0: Van grijs naar groen is goed te doen. Met onze handige instructievideo over het aansluiten van een regenton. Voor de makers. Praxis.
1: फाहोनी जारी पर आप चुने दोस्तों हर एक काम जो आप करें जो किसे कराना है कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 सेफ 365 2 2 3 सेफ पर आपको तार करना है

घटा सावन की घटा फा और हिंदुस्तान रेडियो का नया नंबर मैं आपको देता हूं दोस्तों, लिख कर रख लीजिए 0 7 9 5 8। दोहराता हूं, फा और हिंदुस्तान रेडियो का नया नंबर 0 7 9 5 8। सोनू निगम एंड श्रिया गोसाल अलका यान की दोनों के तीनों के आवाजों में या तीनों के मीठी आवाजों में आप सॉन्ग सुनेंगे।

फिरोज खान, फिरोज खान फिल्म कुर्बानी तैयारी कर रहा था दोस्तों, और सोचा था कि अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने को, लेकिन बात यह हुआ कि एक पार्टी था और वहाँ पर विनोद खन्ना अपन धर्म पत्नी के साथ बैठा हुआ था, और फिरोज खान शराब पिए भूत वहाँ पर पहुँचा और विनोद खन्ना से हाथ मिलाया और उसका धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के डांस करने का चैलेंज किया, लेकिन विनोद खन्ना इस बात से खुश नहीं था। पत्नी भी कहा नहीं मैं डांस नहीं करूँगा, दो बार विनोद खन्ना ने कहा है भैया फिरोज थोड़ा सधार सनी रुस्त हो जाए, लेकिन फिरोज खान तो शराब में चूर था और बात नहीं माना दोस्तों। विनोद खन्ना एक झापड़ दोस्तों, जैसे मैं कहते एक झापड़ एक लप्पड़ मारा चेहरा पर फिरोज खान को, और फिरोज खान तैर देखने लगा। सुबह हुआ जब तो फिरोज खान तार किया विनोद खन्ना को और माफ़ी मांगा और कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। विनोद खन्ना के घर पर पहुंचा फिरोज खान और गले लगा, साथ ही साथ विनोद खन्ना से कहा आप जैसे आदमी को मुझे तलाश था, आप जैसा जबरदस्त आदमी को मुझे तलाश था और आपको मैं फिल्म कुर्बानी मिलेगा एक रोल दूंगा। तो फिल्म कुर्बानी तैयार हुआ जिसमें विनोद खन्ना फिरोज खान और सिन्नत अमन तीनों ने काम किया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग आप सुनेंगे।

आप और हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है दोस्तों, और मिस्टर सानू, टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू, नेखजी सीफ ने तख तक में शुरुआत किया है गीत गाने को, और ये लगभग 1000 से ज़्यादा गाना ये गाया है, और इसका एक न्यू सॉन्ग है यार तुई जैसन फिरन तुन तक में ये सॉन्ग गाया है, और लगभग ये गीत 1 महीना पुराना है। तो एक डुएट है कुमार सानू और साथ ही साथ सर बरीस दोनों के साथ, ये गीत दोनों के आवाज़ों में, दोनों की मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे, मिस्टर सानू एंड सर बरीस।

तुम्हें देते एक और रोमांटिक हॉट सॉन्ग, मैं चॉइस करके रखा हूँ मिस्टर सानू और साधना सरगम, दोनों के आवाज में आप सुनेंगे। कुमार सानू दोस्तों एक सांगर, एक कलाकार है जो 5 साल लगातार अवार्ड पाया, तो जैसन नीखंतक से लेकर फैफन नीखन तलुक 5 साल लगातार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बात यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है, इसलिए कि एक रोज एक दिन के अंदर बिना इन दाख कुमार सानू ने 28 गीत, जी हाँ दोस्तों 28 गीत गाया और रिकॉर्ड किया बिना इन दाख दोस्तों। ये एक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है इसी कारण। मिस्टर सानू एंड साधना सरगम।

कुमार सानू एन साधना सरगम आज आप चांदनी हो और तू मेरे साथ हो। उदित नारायण पद्माश्री उदित नारायण, उदित नारायण ने लगभग 67 देर तक दर्जन गाना गाया है दोस्तों, और 36 देर तक भाषा ताल में। आप जानते हैं इंडिया में लगभग 415 ताल है, भाषा है, तो उदित नारायण ने 67 देर तक 36 भाषा में अपन गीत पेश किया है। और सब गीत में से एक गीत है, ये एक नया सॉन्ग है, एक दो महीना पुरानी है दोस्तों, और गाना के बोले इंडिया से आया हो। उदित नारायण पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में।

नारायण डोसो और उदित नारायण के साथ साथ ये द्वैत आपने सुना। और दोस्तों मित्रा जी, दालिया मित्रा जी ने उदित नारायण के साथ ये द्वैत पेश किया आप सभी के लिए। उदित नारायण ने ही तक ने शुरुआत किया गाना गाने के और लगभग 14 ऑन द स्काई देंगे उदित नारायण के मिला। एक नया सॉन्ग और मैं चॉइस करके रखा उदित नारायण का। मैं सोचता हूँ कि ये गीत फिल्मों में अभी नहीं आया या फिल्मों में नहीं आएगा। मिस्टर उदित नारायण या पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनेंगे।

आज के लिए माफी, कल तो छोड़ दूंगा, कल जब आएगा तो देखा जाएगा दोस्तों, कल आएगा तो देखा जाएगा। मिस्टर सानू, पद्मश्री मिस्टर सानू को नहीं उदित नारायण होना चाहिए। माफी किए दोस्तों, आप सभी से माफी चाहता हूँ। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण के आवाज में एक और सॉन्ग आप सुनेंगे, थोड़ा वक्त और

उदित नारायण के बाद में भी आप गीत को सुने। श्रिया घोषाल, श्रिया घोषाल कई तरह के गीत भी गाया है दोस्तों। और श्रिया घोषाल जब 6 साल के था तभी से ये म्यूजिक में, म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और आज तलुक के म्यूजिक की दुनिया में है। शुरुआत किया अपन सॉन्ग से तुई दर्शन तुई में, और कई तरह से इन्हें लोग अजमायर किए, एक गायकी निकलेंगे। फिर भी जाकर सारे गामा पा का प्रोग्राम में इन्हें लोग टेस्ट किया और पता लगा कि ये प्लेबैक सिंगर का काबिल है। तो श्रिया घोषाल और साथ ही साथ शकील फर्नांडस दोनों के आवाज़ में अब एक गीत सुनेंगे।

सिया को साल का न्यू सॉन्ग दोस्तों जैकलिन फर्नांडिस के साथ अभी आपने सुना। एक दूसरा गीत और है साध लंजारेट गुली माता। ये एक अरबी मिक्स, इंडियन अरबी मिक्स आप सुनेंगे।

0: I love you.
1: Diafa 2023 Sadnam Jarat performing Guli Mata song abhi aap sunne the. Aap hi ka happy station Fahon Hindustani Radio aur aap sunne program Gito ka Sangam. Sonu Nigam, Padma Shri Sonu Nigam aur ek baar phir Shriya Ghoshal dono ki meethi awazon mein kuch kaha apne. मूवी का नाम है, सॉन्ग का बोल है पहले ना देखता था यू मेरा दिल.

सोनू निगम एंड श्रिया घोषाल दोनों के मीठी आवाज में सॉन्ग आप सुन रहे थे। सोनू निगम दोस्तों, सोनू निगम प्रोग्राम आज और कल में लगभग 100, जी हाँ दोस्तों 100 गाना रिकॉर्ड किया है पद्मश्री, स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद रफी का। और वैसे तो सोनू निगम गजल, क्लासिक, भजन और 13 भाषा में भी अपन गीत पेश किया है। एक बार फिर मिस्टर सोनू निगम या पद्मश्री सोनू निगम के आवाज में आप गीत सुनेंगे।

मर जाओ या जी लो जरा। दोस्तों आपकी बार सोनू निगम एक बार फिर, लेकिन उसका साथ देंगी अलका याग्निक। बिन अलका के दोस्तों ये गीत संगीत जो है इन दिनों में भी पूरी नहीं होते हैं। और अलका याग्निक एक गायकी है जो 3000 से ज़्यादा सॉन्ग पेश किया है। तो मेरी मोहब्बत का जाने क्या होता है, मेरी मोहब्बत को क्या जाने क्या होता है, सोनू एंड

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोपेयर्स
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

0: तेरे नाम किया।
1: जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

इश्क प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

तो फाहुन तो यही है, आप हो, मैं हूँ, प्रकृति है, हम सब मिलके यही स्टेशन सुन रहे हैं, हिट स्टेशन, म्यूजिक स्टेशन, तारको नंबर 07-362-2077. और वैसे कुछ जानना चाहते हो, एक सदस्य बनना चाहते हो फाहुन की, तो वो भी हो सकता है, तो आपको दूसरा नंबर आपको चलाना पड़ेगा, यानी कि 07-365-2047. ये एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर है दोस्तों, हमारे प्रिय मित्रों, बेस्ट लीफ लॉयस्टर, शुभ दिन, मोये दाख।

ये संगीत है ना, सुनो अब इसी धुन पर आप

батиха хрут, хиша хрут. Dank u wel. U mag ook mee.

तो हमारे दोस्तों ये सुने आप क्योंकि हुई ये बात ऐसी है, उसकी धड़कन में मेरी याद आधी बाकी है दोस्तों, उसकी धड़कन में मेरी याद आधी बाकी है, ये हकीकत मेरा जीने के लिए काफ़ी है दोस्तों। तो यूं ही और जो संगीत ये सुबह के प्रोग्राम में फाहुन हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन। हाँ प्रिय दोस्तों, वही यूं ही मैं कह दूं कि उसकी धड़कन में मेरी याद अभी बाकी है, उसकी धड़कन में मेरी याद अभी बाकी है, यह हकीकत मेरे जीने के लिए काफी है, भूली तो नहीं।

वाह रे प्यार प्यार प्यार हमारे दोस्तों जो होता है, और इसी दरमियान मैं आपको सुनाऊं। अगर रुक जाए मेरी धड़कन तो इसे मौत ना समझना, अगर रुक जाए मेरी धड़कन तो इसे मौत ना समझना। ऐसा हुआ है अक्सर तुझे याद करते करते, सुने आप। अगर रुक जाए मेरी धड़कन तो इसे मौत ना समझना, ऐसा हुआ है अक्सर तुझे याद करते करते। और यू ही तो मैं आपको ये और कहानी सुनाऊं तोता मैना की, सुनना चाहूंगे? ये तोता मैना की कहानी है।

आप ही के स्टेशन हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन डार्क नंबर 07-322-6727-77 लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम या तो 07-365-22-47

वाह, अभी मैं ये आपका शुभकामनाओं पूर्ण हूँ। साथ हो आपने, खुशी की बात है क्योंकि यही फाहुन है और फाहुन के साथ आप हो, फाहुन के परिवार रिश्तेदार, खुश रहना। लाइव ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हमेशा 24 घंटे लगातार।

0: सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
1: आप भी बोलिए कैसा लगा आपको आनंद ध्यान सुकून। यही मैं सोच रहा हूँ कि मत इंतजार करो वो पल, बूढ़े हो जाएंगे तब आप हनुमान चालीसा को पाठ करेंगे, तब तो देह में शक्ति नहीं रह जाएगा। दोस्तों जो करना है आज ही करो, जो कल करना था आज करो, जो आज करना अभी करते चलो, यही है भजन भक्ति करो और अपना कार्य अपने कर्म जो आपको चाहिए करने के लिए सृष्टि में आप आए तो करना चाहिए, जहाँ से आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने की कोशिश तो हर ही कोई करते हैं, तो हो जाए दोस्तों आप मेहनत मशक्कत करेंगे जैसे भी हो और ज़रूर से जाकर और मनोकामना आपके पूर्ण करें भगवान, और जिसे आप मानते जानते हो सनातन धर्म के लोग जो है और पूजा पाठ भी करते हैं जैसे, और कोशिश करो अपनी जो हम लोगों के ग्रंथों ने सिखाया है उसी राह पे चलने के लिए। लहसुन प्याज छोड़ो, मदरा मांस छोड़ो दोस्तों, भजन भक्ति करो, अपना कार्य करते चलो, देखो क्या होता है, चमत्कार ही चमत्कार होगा ज़रूर से दोस्तों। हमारी दुनिया में सृष्टि में संसार में जो है धीरे धीरे धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए है, और जब हमें शाकाहारी होना चाहिए तो कहाँ मांसाहारी हो चले हैं दोस्तों, क्या बात है, कैसे उसे और एक उसमें तुरुख के होगा। और हम आपको बतलाते हैं याद दिलाते हैं कि वही मुते यमुसैन वाची बैंत बैस चलो इस रास, ना कि दुनिया के पीछे दौड़ो, दुनिया के पीछे दौड़ेंगे दुनिया जो करता है तो उस पर कभी नहीं और सुकून होगा, खुशी आपको मिलेगा यूँ ही। और आपको याद दिलाता हूँ ये कार्यक्रम आप ही के नाम प्रस्तुत होता है, मोय मोय दख बैस चलो इस रास, और कोई ऐसे भाषण में दे ही देता हूँ और यूं ही आपको याद दिलाता हूं। आरती सुखलाल डंकवेल डंकवेल डंकवेल नोकस के डंकवेल फोर यू अतैसी मुफरो आशा पूरन यू फहरत बदांग भैया नारायण नारायण जी। हाँ शीतल आपको एक शुभ दिन इधर तो अप वेलकम निधन ऊ जैसे भी आप हो और हमारी साथ दे रहे हो, खुशी हौसला मिलता है मुझको और ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए, जैसे हमारी भैया चांद रघुनाथ भी प्रोग्राम सुनते हैं हमसे, तो हम हर एक को एक कितने नाम मैं लूँ यूँ ही तो देख रहा हूँ मैं हाथ करके, हर एक को एक शुभ दिन कहता हूँ और चल के साथ में मिलकर जब अपने लिए कुछ और संगीत मैं आपके लिए चला रहा हूँ इस वक्त, यही सोचते हुए कि आपको पसंद आता हुआ होगा, नहीं पसंद तो बतलाइए क्या मुझे चलाना है, तार के नंबर तो आप जानते हो, लाइव ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। यह कार्यक्रम हमेशा जो मैं अपना कार्यक्रम चलाता हूं यह अपूर्व मंच नहीं है, यह एक लाइव ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम है जैसे कि आपको मालूम है। कलाकार जो है देवेंद्र सिंह शिवनाथ

रही कलाकार। कोलेखा डीजे।

हमारा ही कलाकार है दोस्तों, शेन हेंजेस। इसके नाम है दविंद्र सिंह चिवनाथ। वाह वाह ढोल।

वाह वाह वाह, कलाकार है, तारीफ तो करना ही चाहिए ना, और कलाकार को क्या ही चाहिए, उसी तो है तारीफ, और उसी के इंतजार करते रहते हैं। यहाँ मैंने आज के कार्यक्रम में ये सुनाए जरा से और सा कलाकार जो है कोशिश करते हैं, और ये जो इस बार देवेंद्र सिंह शिवनाथ के बाद शिवम राजाराम, उनकी कमाल जरा से सुन लेते हैं, शिवम क्या बतलाता है। साथ हो आप।

तो अपना ही कलाकार के कमाल आप सुने दोस्तों, वो कम तो नहीं है एक दूसरे कलाकार से फिर भी। और हमारी जो है तरीका जो है अपने अपना तरीका होता है संगीत की, कलाकार जो है और कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना मतलब प्यार करते हैं दोस्तों, ये कभी ज़रूर करके देखो, करके देखो, कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना मतलब प्यार करते हैं। तो जानते रहना बिना मतलब तो यूं ही नहीं हो सकता है किसी वक्त। लोग कहते हैं सब कुछ जो है जितना कुछ है और भाई वत हो तो वत भाई, और ये कहते हैं लोग प्यार में प्यार यूं ही होता है, लोग जो करते हैं प्यार जानते हैं जिसके साथ जो गुजरे हैं वही बतला सकते हैं खुशी के बाद, यही चाहते हम क्योंकि प्यार जो है उसमें सुकून मिलना चाहिए दोस्तों, सुकून खुशी मोहब्बत प्यार मोहब्बत जो है दुनिया में इसी पर दुनिया है, दुनिया प्यार भी मोहब्बत से तो है दोस्तों। और जो है पल जिंदगी के जीते चलो, और ख़ास करके संगीत, हाँ संगीत सुनते रहो। और यूँ ही एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रेडियो फाहून जो है दया भी प्लस रेडियो है इस दुनिया में यानी कि हॉलैंड देश में, ये अपने घर पर सुन सकते हैं। अगर आपको दया भी रेडियो है तब नहीं है तो आप नहीं सुन पाएंगे, इंटरनेट के ज़रिए से आप सुन सकेंगे ज़रूर से, लेकिन ये बात ये गुनाह करते चलो, चुगली चाई तो नहीं करना चाहिए ना, लेकिन लोगों से बतलाते चलो कि एक रेडियो फाहून है जो आप सुन सकते हो उस पे दया बे पर आप एगो खरीदो दया बे प्लस रेडियो डिजिटल रेडियो तो सुन सकेंगे। दस उमख वेल उमख वमै मख वेल चुगली चाय दस उमख द दोस्त पेल अन यू फ्रेंड कहने से बेस्ट लो इस रात से जो है रेडियो फाहून जो है, और इसे इंटरनेट के जरिए से आप सुन सकते हो अपनी टैबलेट अपने पीसी अपने मोबाइल पर जहाँ भी आप चाहो यूं ही फाहून एफएम पुनेदनल जो है ये सारी सृष्टि में दुनिया में हर जगह ये सुन सकते हो। आपको एक शुभ दिन कहता हूँ दोस्तों, लाइफ खनित और ये लाइफ आपके लिए प्रस्तुत जो हम कर रहे हैं कार्यक्रम में हर एक को जो जिस तरह से भी साथ दे रहे हैं वत मुद तारीफ करूँ यूँ ही ज़रूर से सब खोजा है युक्सुक वर्द मिलने नहीं मिलता है। अगर आप जानते हो एक तो ज़रूर आप मुझसे बताइए कि कैसे मैं आपको तारीफ करूं, कैसे करूं। और ये कलाकार जो ये क्या चाहते हैं ये सब उसी को तो चाहते हैं दोस्तों। और सविता सिंह ये कलाकार है त्रिनिदाद और टोबैगो के, हमारी लोकल कलाकार है। मैं आज के कार्यक्रम में जैसे मैंने आपसे बताए और प्रस्तुत कर रहा हूं, चला रहा हूं, तो सविता सिंह ये एक बच्ची है और हाल ही में अपने और ये संगीत के कलाकार कोशिश करती है। चल के सुनते हैं आज इन दिनों तुम्हें दर्शन पीर तुम तक के धुन जो है

तो यूं ही आपसे कहता हूं ये का आपको और कहना है कलाकार को दोस्तों, हमारे त्रिनिदाद टोबैगो के कलाकार है, खास करके त्रिनिदाद के ये कलाकार है और अपनी तरीका से आते हुए फिर ट्वेंट तक जो है और प्रोग्राम में हमारी जो है तरीका और एक इमिटेट किया लता जी के गाया हुआ गीत आपको सुनाए। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला बैठा बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो भी ठीक, कोई ना करे तो भी ठीक दोस्तों। और लगता ऐसी है और ये जो है आपके लिए कलाकारों के तारीफ करते हुए संगीत जो हम आपके लिए पेश कर रहा हूँ, तो इस बार फिर से और जैसे मैंने कहा इसी तरह से आप एक हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फावन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ के माध्यम से। और जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, टेक केयर।

यही तो है रजेश सिंह नंदन हमारे दोस्तों हो और हर कुछ प्रोग्राम सुन रहे हो डंक वेल खास करके मुफरो नालिनी मुफरो रोशनी बेकारू बेया बत्तीसवर और खास करके मुफरो उषा दुर्गा सिर्फ मुफरो हेरे कहा गया दोस्तों मैं हेरे को ढूंढ रहा हूँ चल के जरा से ये मैं आपको सुना दूँ इस एक ही दम इसी पल अगर आपको इतराज ना हो तब फिर से एक बार वही खास करके जो है और सविता सिंह एक ऐसा नंबर भी गाया है चल के सुनते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो से त्रिनिदाद से दोस्तों सविता सिंह आप ही के हिट से पाहुन के माध्यम से

आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस गीत के बारे में। वे देवी जी ने खास करके सविता सिंह, ये कलाकार संगीत की, और आपके लिए सुनाए अपनी आवाज़ में, अपनी खास करके लिखे हुए नंबर, और आज के कार्यक्रम में मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया। तो मेरा कहना, मेरा सोच, ये विचार, अच्छा गलत आप भी बतला सकते हो। अगर अपना पहचान आपको बनाना है तो जब तक आप इमिटेट करेंगे तब यूं ही उसमें आपके बीत जाएगा समय, वक्त सीखेंगे ज़रूर, लेकिन पहचान जो अपना आप बनाना है, जैसे आप मुकेश जी हैं, रफ़ी साहेब, पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी साहेब, लता जी, ये सुरों की देवी, ये कलाकार अपने पहचान बनाए हैं, और उनसे बेहतर तो आप नहीं गा पाएंगे। अगर चाहे 1,00,000 बार चाहेंगे तो कभी नहीं गा पाएंगे। जो है रफ़ी साहेब वो रफ़ी साहेब रह जाएगा, मुकेश जी मुकेश रह जाएगा, लता जी लता रह जाएगा। जैसे हमारे भैया राजेंद्र वन का, उनकी आवाज़ जो मिलती जुलती है, और द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद से, तो वो तो आवाज़ मिलती जुलती, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे भाई सुरेन जो है भगवान दीन, उनकी आवाज़ दादा हेमंत कुमार के साथ मिलती जुलती है। तो मैं क्या कहता हूँ यूँ ही, और आपको समझाना सिखाना कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपना विचार जो है मैं इसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। हमारे प्रिय मित्रों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटे लगातार हमारी कलाकारें जो है, खास करके कलाकार आकर यहाँ पर अपने कार्य को करते हैं, खास जो है, और हर एक को मेरे तरफ से हर एक को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। अपने अपने तरीका आकर ये रेडियो को चलाते हैं दोस्तों, समय अपने लेकर, और ये देश व लेने मैं कहता हूँ आकर आपके साथ देते हैं डायरेक्टली। और जो है हमारी श्रीमान कुमार घिराव भैया, शिव चेतन खास करके अपना कार्य भी करते हैं दोस्तों, और शुरुआत जब से रेडियो और उठे हैं आज दिन तलुक कौर, जैसे कि हमारे कुड़ी खास जितने हैं, रजेश बदलू, दिलप रामादीन, कितने हैं दोस्तों, किस किस के नाम नहीं लूँ, अगर किसका नाम नहीं लूँगा तो खास करके नाराज़ हो जाएगा, सोचेंगे कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। और ये वाहन पे आप क्यों रहना हमेशा, और 24 घंटे लगातार जब अपना रेडियो को ऑन करेंगे आप, तो ज़रूर से हमें पाएंगे। हेलो तुम्हें एक बार कोशिश करो और लोगों से बतलाते चलो को दया बे प्लस जो रेडियो वाहन है, अपने मोटर कार इन दिनों आप खरीदे हैं तो उनमें ज़रूर दया बे होगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जो है, आने वाले दिनों में सभी रेडियो जो है दिया भी डिजिटल हो जाएगा। हमारे प्रिय मित्रों दोस्तों, सीखंदा दाख मैं आपको कह रहा हूँ, अब आगे के कार्यक्रम तो ज़रूर से रेडियो के कार्य करवाना है तो ज़रूर अवश्य आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमेशा जब आप चाहे, दफ्तर खुला रहता है प्रतिदिन, और सुबह

ये दिन हो गया है दोस्तों, कहाँ पे उन दिन था, कैसे सब कुछ अगर चाहते थे जानने के लिए तो आपको रेडियो सुनना पड़ता था, क्योंकि आज का दिन हो गया, सब कुछ आप मिल जाता है इंटरनेट पे, जो आप चाहेगा मिल जाएगा ना। आप सोचो कितना जल्दबाजी में ये तरक्की ये दुनिया के हो रहा है, बर्बाद होगा या बनेगा, हम तो है जी रहे आज। और वतला तो अख्तर फुरो से कोमन जो तो कम से खेने राशि बेस्ट लोसरास। हम यहाँ पर एक नंबर आपके लिए सुनाने चाहता हूँ, एक इमिटेट क्या हुआ, लोकल सॉन्ग है और

हाँ दोस्तों, हमारा ही कलाकार है किरण केदार की आवाज है। और कलाकार तो इसी तरह से होते हैं ना, यू ही। और आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसी दरमियान कह दूँ अगर आपको इजाजत हो तो। और ये अपने बारे में मैं कहता हूँ, यूं ही शेर शायरी मुझे और मेरा आदत सी बन गई है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें थोड़ा से दर्द आपको ज़रूर से एहसास होगा। कफन मेरे सर से उतार कर खूब दीदार कर लेना, कफन मेरे सर से उतार कर खूब दीदार कर लेना, फिर कभी नजर नहीं आएगी वो आंखें, हाँ फिर नजर नहीं आएगा वो आंखें जिनको तुम बहुत रुलाया करते थे ना। अब यही तो बात है दोस्तों, जबकि ये जो कलाकार इस बार मैंने आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहते ही रहूँगा कि कलाकार मरहूम, मैं कभी उन लोगों के नहीं कहता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कलाकार जिंदा रहता है दोस्तों। यूँ ही मैं आपसे कहता हूँ और मेरा विचार ऐसा ही है, तो आपके विचार जैसे मेरा है। फिर भी इस बार नंबर जो है, अगर आप इनके नाम सुने होंगे, जानते होंगे, तो हम जब लोकल सॉन्ग्स आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें से एक ये भी है। बहुत जल्द हमें छोड़ के चले गए,

0: वाह रे वाह कलाकार, अपनी अपनी जगह हर एक कोई ना। अनिल भीम, उनकी आवाज कितना मधुर आवाज ना, और खास करके आते हैं लोग इसी तरह से, और ये तोहफा हम लोग के छोड़ जाते हैं। ये संगीत होता है दोस्तों, संगीत के कलाकार, हर एक कोई कलाकार, कला अपना कला कलाकार को प्रस्तुत करके, और कलाकारें अपना कला को प्रस्तुत करके और चले जाते हैं दोस्तों, चले जाते कहाँ, फिर भी उनकी कला जो है, और हमेशा हम उसे हम सीखते जानते हैं और उसे मजा भी लेते हैं और सैरफलक हो जाता है हमेशा के लिए ना दोस्तों। यही तो है खास करके जो ही आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे पे चल के एक, जबकि मैंने आपसे कह चुका कि कुछ जो है लोकल नोमर खास करके हम आपके लिए प्रस्तुत करें अपना ही कलाकारों के, और जो है छोड़ दी सफाई देना, मिन्नते करना और मनाना दोस्तों, जिसको मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे आगे बढ़े दोस्तों, यूं ही चलो आगे, और जो है जेके जो जी चाहे करते रहना, क्योंकि जो इस बार नंबर हम आपके लिए पेश करेंगे, आप ही की हिट सेशन द म्यूजिक सेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से आपका सेवक शाम पूरन अभी आपके साथ दे रहा हूँ, और हर एक कोई को फिर से एक बार लाइव ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम जो है, और हृदय से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कहते हुए इस बार स्टीफन धर्मपाल, नाख सोंग इमिटेट
1: ना कन्हैया रे
0: और ओरिजिनल सॉन्ग जो है

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने के एक ऐसा जादू भर दिया। और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

So, gaane se pata chalta hai, se stok wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर, बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी

में बैठूं और आपको पहले बताऊं कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है। 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्र के साथ परिचित का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमार को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन घी हैं इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

दिल में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं। वह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। नागपंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही सुनता

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म आदमी में से निकाल कर हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप भी हैं, मैं हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाला है मैथ्यू मुकेश। जी हाँ, मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म मर्यादा, फिल्म मर्यादा के गीत हम, चलो हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा

0: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, फिल्म मर्यादा में से निकाले हैं। मेरे पास तो ये गीत सीडी पर था इसलिए नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कह रहा हूँ कहूँगा तो ये फिल्म में राजकुमार जी ने काम किए हैं। और लोग हो गए लेकिन सिर्फ राजीव कुमार के नाम मुझे इस वक्त याद है। फिल्म मर्यादा में से हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है कि राजा रानी की कहानी है। देखते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत फिल्म उपहार में से, नेगन तीन एनन सेफ अंत।
1: मैं एक राजा

मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की निकाल कर निगति ए नसीब का ये गीत फिल्म उपहार में से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर हमने चलाए। चलिए देखते हैं, हमने प्लेयर पर रखे हैं लेकिन कहाँ गया ये, तो फिर निकल गया। बहरहाल हाँ आ गया फिर। चलिए हम आपको सुना रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

वाह क्या बात है, आपने सुने एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं कि प्यार करने वालों का कभी हार नहीं होता है, इसलिए अगर प्यार करना है, हार नहीं है तो प्यार का इजहार कीजिए अवश्य। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अभी तो देखते हैं, जी हाँ अभी थोड़ा समय अवश्य बाकी है। लीजिए इस तरह से आ रहा है, आपकी परछाइयां में से, मदन मोहन के साज पर।

लता जी, मदन मोहन के साज पर हम आपको सुनाए ये गीत। फिल्म आपकी परछाइयां में से निकाल कर निकली फिर सस्त का ये गीत, 1974 का ये गीत, ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। इस तरह से है,

चली जाए जिया नहीं जाए, रफी साहेब और लता जी फिल्म अनजाना, फिल्म अनजाना में से निकाले हैं और ये गीत हमने पेश किए आप सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, जहाँ पर आप भी होंगे आपका हृदय से स्वागत है। हमने प्लेयर में गीत और रखे हैं, जी हाँ, क्या ख्याल है। चलो ये मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मिलाप में से निकाले हैं, 1972 नेगेटिव 20 का ये फिल्म है और चलो सुनते हैं इस तरह से।

मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल पर राज करने वाला, आपको सुनाए ब्रिजभूषण के साज पर हमने पेश की फिल्म मिलाप में से निकाल कर नेगंतिन तो इन सैफिन तक 1972 का ये गीत। चलिए अगला नंबर हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल उनके पहली नज़र क्या असर कर गई, चलो लता जी आपको बताएंगे क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते।

उनकी पहली नज़र क्या असर कर गई, लता जी आपको सुनाएं फिल्म अप्रैल फूल। फिल्म अप्रैल फूल में से निकाले हैं निगेती फिर से हस्तक का ये गीत 1974 का ये गीत शंकर जयकिशन के साथ पर आओ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल है देखते हैं। वो दिन याद करो, जी हाँ आप भी वो दिन याद करो और मैं भी वो दिन याद कर रहा हूँ। और कौन सा दिन, कौन सी साल, 1971 का, जी हाँ द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

मोहब्बत की कहानियाँ लता जी और द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए हैं। फिल्म वो दिन याद करो में से निकाले हैं नेकी थी इन से फिर तक यह शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रादिया। चलिए अगला गीत हम देख रहे हैं प्लेयर में हमने रखे हैं लता जी की, लता जी के गीत है देखा जाए जहाँ तक मेरा हाँ नेकी दिन फैफ तक का ये गीत है और चलिए हम आपको सुनाते हैं। फिल्म है हिमालय की गोद में से याद हिमालया हमने कहा था याद होगा हिमालय जो उस समय सूरीनाम की बात था। मैं कहाँ पर था तो एक हफ्सी आया बाहर से भीतर उन्हें गंगा गंगा एक बात बतानी है हमने बोलो भाई हमने एक फिल्म देखे हैं कि पोस्टर चपकाया हुआ है हाँ ये पता नहीं कि दुलिक्स का था या इंडिया ओवरसीज का क्योंकि इंडिया ओवरसीज का फिल्म में द पारल चलाता था और दुलिक्स का जसोदरा चलाता था अब मुझे याद नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा फिल्म का नाम है हिमालया के खौतमेन। हमने सोचा यार सोचते सोचते कुछ देर बाद याद क्योंकि गाना पहले आ जाता था सूरीनाम में ना तो याद आया हाँ निकिति फैफन शस्त्र का ये फिल्म है हिमालय के गोद में। उन्होंने कहा खौतमेन तो बाद में समझा गया कि हाँ गोद में लीजिए हिमालय के गोद में से निकाल रहे हैं इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत।

सारे बगियां खिली, गीत पेश हुआ लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म हिमालय के गोद में से निकाले हैं 1965 का ये गीत, निगदीन फैसल का ये गीत, जहाँ तक मेरा ख्याल है शंकर जय किशन है, लेकिन पता नहीं, बहरहाल अगर गलत हो तो मुझे आप बता देना, शंकर जय किशन के साथ में जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और पेश करने वाले हैं और वो ये है, हमने तो देखे ही नहीं लेकिन चलाते हैं, चलो हम भी सुनते हैं आप भी सुनो।

0: गर तुम भुला न दोगे फिल्म यकीन में से निकाले हैं और हमने पेश की ऊपर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है सोपन विज्ञान।

आपकी राशि, लगन तथा सौपन कि सुनने वालों, जैसे आपकी राशि है उसके अनुसार लगन और उससे आने वाले स्वप्न कैसे होते हैं। तुला लगन, इस लगन वालों का शरीर तब ठीक रहता है जब शुक्र बलवान होकर शुभ स्थान में स्थित शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और शुभ ग्रह लगन में हो या इसे देख रहे हो, अन्य रोगी शरीर वाला होता है। आर्थिक सुखी होने के लिए मंगल बलवान हो, शुभ ग्रह देख रहे हो और शुभ ग्रह दूसरे तथा ग्यारहवें भाव में हो या देख रहे हो। स्त्री सुख की प्राप्ति के लिए मंगल बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह एक साथ में स्थित हो या इन्हें देख रहे हो। इसके विपरीत ग्रह जीवन दुखदायी बन जाता है। संतान सुख का स्वप्न तब साकार होता है जब शनि बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान में हो या इसे देख रहे हो, अन्यथा यह स्वप्न अधूरा ही रह जाता है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैश्विक लगन, शरीर सुख का स्वपन साकार तभी होगा जबकि लग्नेश मंगल को या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह लगन में स्थित हो। इसके प्रतिकूल शरीर रोगी रहता है। धनवान बनने का सपना जब पूरा होता है, जब गुरु बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या दूसरे या ग्यारहवें शुभ ग्रह हो या यह देख रहे हो, अन्यथा अधूरा ही रहता है। गृह जीवन तब ही सुखी होगा जब शुक्र बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या सातवें शुभ ग्रह स्थित हो या देख रहे हो, अन्यथा स्त्री कष्ट देने वाली होती है। योग्य संतान तब उत्पन्न होती है जब गुरु बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या पांचवें भाव में स्थित हो या इस भाव में देख रहे हो, अन्यथा संतान दुख देती है।

धनु लगन शयी सुख का सपना साकार तभी होगा जब लग्नेश बलवान गुरु को शुभ ग्रह देखेंगे। या लगन में शुभ ग्रह हो या इसको देखें, प्रतिकूल होने पर रोगी रहेगा। धनवान बनने का स्वप्न तब पूरा होगा जब धनेश लाभेश बलवान को शुभ ग्रह देखें। या यहाँ शुभ ग्रह हो या इन स्थानों को शुभ ग्रह देखें, अन्यथा जातक गरीब ही रहेगा। स्त्री सुख तब प्राप्त होगा जब सप्तमेश बलवान को शुभ ग्रह देखें या सातवें स्थित हो या इस स्थान को देखें, चंद्र शुक्र एक या सातवें भाव में हो। संतान सुख का सपना साकार होने के लिए मंगल या पांचवें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह पांचवें स्थान में स्थित हो, वरना संतान की ओर से मनुष्य दुख उठाता है।

मकर लगन। स्वास्थ्य दीर्घ आयु योग तब होता है जब शनि बलवान या लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो या लगन में स्थित हो, वरना शरीर निर्बल हो जाता है। धनवान बनने का सपना तभी पूरा होगा जब शनि बलवान को या दूसरे या ग्यारहवें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह दूसरे ग्यारहवें या केंद्र त्रिकोण में स्थित हो। किमदुम योग होने पर मनुष्य निर्धन हो जाता है। संतान सुख का स्वप्न साकार करने के लिए शुक्र बलवान या पांचवें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हो या स्थित हो, अन्यथा नहीं। स्त्री सुख के लिए सप्तमेश को शुभ ग्रह देख रहे हो या स्थित हो या सातवें शुभ ग्रह देख रहे हो, चंद्र दोषी होने पर यह स्वप्न अधूरा रह जाता है।

0: सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे। गीत के बाद फिर हम आपसे जुड़ जाएंगे।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, गीत के बाद मैं वापस आ गई हूँ। ये गीत रात को सपना दिखाई दिया हमको, सुरीनाम के मशहूर गीतकार रामदेव चेतु जी ने गाया है। कुंभ लगन। इन जातकों को शरीर सुख तब मिलेगा जब शनि लगनेश बलवान को या लगन को बलवान शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह लगन में स्थित हो। विपरीत स्थिति शरीर को निर्बल बना देती है। धनवान बनने के लिए बलवान धनेश या लाभेश को शुभ ग्रह देख रहे हो या दो ग्यारहवें भाव में शुभ ग्रह हो या इन घरों को देख रहे हो और शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, इसके विपरीत जातक गरीब रहता है। स्त्री सुख के लिए सप्तमेश बलवान को या सातवें घर को शुभ ग्रह देख रहे हो या यह सातवें घर में हो, अन्यथा गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है। संतान सुख के लिए पंचमेश बलवान को या पांचवें घर को शुभ ग्रह देख रहे हो या पांचवें स्थित हो, निर्बल होने पर संतान की हानि करता है।

मीन लगन, इन जातकों के शरीर सुख के लिए बलवान लग्नेश तथा लगन को शुभ ग्रह देख रहे हो और यह लगन में स्थित हो, धनवान बनने के लिए धनेश मंगल को बलवान शुभ ग्रह देख रहे हो या यह दूसरे तथा ग्यारहवें भाव में स्थित हो या देख रहे हो, केमद्रुम योग होने पर मनुष्य कंगाल हो जाता है। स्त्री सुख के लिए निर्दोष लगन में शुक्र हो तथा पतिव्रता स्त्री मिलती है। संतान सुख के लिए पंचमेश चंद्रमा बलवान को शुभ ग्रह देख रहे हो या से पांचवें स्थित हों।

सुनने वालों, जो भी गीत आपने सुना उनके गाने वाले हैं देसी रघु सिंह। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, रंग तथा संवाद। हम जो सपने में रंग देखते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं उनका भी कुछ मतलब होता है सुनने वालों। अधिकतर सपने रंगीन दृश्यों से भरपूर होते हैं। सपनों की भांति यह रंग भी प्रायः अपने पीछे श्वेत शाम एहसास छोड़कर धूमिल हो जाते हैं। यदि सपने या इसके अर्थ में रंगों का कोई विशेष महत्व ना हो तो उनका खो जाना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत बार रंग स्वप्न के वातावरण तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मनोभावों से भी जुड़े रहते हैं। एक अत्यधिक भूरे रंग के दृश्य या परछाई से एक नीरस परिस्थिति का आभास होता है। इसके विपरीत धूप या रोशनी दूर क्षितिज से एक सुनहरे भविष्य की आशा जगाते हैं। सपने में दिखने वाला हर रंग एक संकेत है, भविष्य का दूत है। स्वप्न में की गई बातचीत अपने आप में किसी रंग का प्रतीक हो सकती है, जैसे बार बार किसी रंग का जिक्र। इन अर्थों को समझने का कार्य स्वप्न देखने वाले से बेहतर कोई और नहीं करता, क्योंकि स्वप्न आपकी अपनी रचना है। आपकी श्वास की तरह स्वप्न भी आपके अपने हैं।

लाल रंग, यह रंग शारीरिक शक्ति के उत्थान, स्वास्थ्य में सुधार, क्रियाशीलता, पवित्रता, मगर साथ ही साथ नाराज़गी, खतरा, दुर्घटना का प्रतीक है। यह मंगल का कारक है, मेष राशि से संबंधित है। सुनने वालों, लाल रंग जो है वो शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य में सुधार लाता है, और इस लाल रंग से आप नाराज़ भी जल्दी हो जाते हो और दुर्घटना भी होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है।

नारंगी रंग। यह एक बहुत ही अच्छा रंग है जो सामाजिक क्रियाकलापों, हर्षोल्लास, शक्ति, स्फूर्ति का प्रतीक है। यह रवि का कारक है और सिंह राशि से संबंधित है। यह छोटी छोटी बातों का भी प्रतीक है। सुनने वालों, नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर, यह एक बहुत अच्छा रंग है। इससे शरीर में शक्ति रहती है, हर्षोल्लास रहता है और रवि का कारक है। रवि यानी सूर्य का कारक है और सिंह राशि से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी यह अच्छा रंग है और छोटी छोटी बातों का भी यह ध्यान रखता है।

स्पष्ट विचारों, वैचारिक प्रतिबिंबों, दिमागी बातों, कार्यता, धनात्मक सोच विचार प्रसन्नता का प्रतीक है। यह गुरु का कारक है, धनु तथा मीन से संबंधित है। धूप सा प्रकाशमान व चांदी सा शीतल प्रसन्न रखने वाला, किसी समस्या के समाधान हेतु हृदय की जगह मस्तिष्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। सुनने वालों, पीला रंग यानी कि खेल कलर बहुत अच्छा कलर माना गया है। यह स्पष्ट विचारों कि जो आपके विचार हैं वो साफ हैं और दिमागी बातों में कायरता नहीं है, मन प्रसन्न है और गुरु का कारक है। और धूप सा प्रकाशमान कि जैसे धूप सबको प्रकाश देती है वैसे पीला रंग सबको प्रकाशमान करता है। और चांद की शीतल की चांदनी की तरह शीतल है और मन को प्रसन्न करने वाला है।

हरियाली, शांति, आराम, अमन, चैन ईश्वर का प्रतीक है। यह बुध का कारक है, मिथुन तथा कन्या राशि से संबंधित है। हरा रंग यानी खून कलर सुनने वालों, यह रंग हरियाली, अभी पीछे हमने श्रवण मास मनाया तो वो हरा रंग ही है, क्योंकि श्रवण मास में सब कुछ हरा हरा होता है और सावन का महीना है, सावन बारिश लाता है, बारिश आती इसीलिए उसमें भी सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है।

यह सुरक्षा निजी परेशानियों तथा दुख का प्रतीक है। यह शनि का कारक है, मकर तथा कुंभ राशि से संबंधित है। सुनने वालों, नीला रंग यानी कि ब्लू कलर सुरक्षा भी करता है और परेशानी और दुख भी देता है, क्योंकि नीला रंग ब्लू कलर शनि देवता का भी रंग है। इसीलिए आप अपने सपने में सुनने वालों इस ब्लू कलर को देखेंगे तो उसका मतलब आप समझ जाना।

दर्द कम करना है तो समेट कर मत रखो, उसे बह जाने दो, क्योंकि आंखें हमारे दिल का आईना होती हैं। सुनने वालों, मैं अब आपको एक गीत सुनाऊंगी। अब हम बढ़ते हैं गीत की ओर।

सुनने वालों, अभी आपने गीत सुना बसो मोरे नैना में नंद गोपाल। ये गीत गाया है श्री राम देव चेतु जी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, बसंती रंग। खुशी, समृद्धि, मानसिक शक्ति, ज्ञान, देशभक्ति, बलिदान का प्रतीक है। यह हृदय की बात मानने को प्रेरित करता है और अंत प्रेरणा व अंत ज्ञान के उदय के साथ किसी दूसरे विश्व के होने का संदेश देता है। सुनने वालों, बसंती रंग यानी के डोंकर और आयन कलर, इसे हिंदी में बसंती रंग कहते हैं। और ये बसंती रंग भारत के झंडे में भी दिखाई देता है और इससे जो देशभक्त बॉर्डर में जवान होते हैं उन्हें देश के ऊपर मर मिटने की अपनी लालसा रहती है।

बैंगनी रंग, यह रंग स्वर्ग के समीपाय होने के कारण आध्यात्मिक इच्छाओं व धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। बैंगनी रंग सुनने वालों, हिंदी में बैंगनी रंग कहते हैं, आप कहते हो भाटा, भाटा का कलर पार्स। यह रंग स्वर्ग के समीप होने के कारण कि यह रंग इतना अच्छा है कि यह स्वर्ग के समान है और जो हमारी धार्मिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करता है।

सफ़ेद रंग, यह सभी रंगों से मिलकर बनता है। यह खुशी, गमी, स्वच्छता, पवित्रता, देवी शक्ति, शोक शांति, विवाह शक्ति, स्फूर्ति का प्रतीक है। यह शुक्र का कारक है और वृष तथा तुला राशि से संबंधित है। सुनने वालों, सफ़ेद रंग यानी कि वित्त कलर, यह सभी रंगों से मिलकर बनता है और इसमें सब कुछ शामिल है, खुशी, गम, स्वच्छ, पवित्र, देवी शक्ति और शोक भी है, विवाह शक्ति, स्फूर्ति, सब कुछ इसमें मिल जाता है।

सुनने वालों, अभी जो आपने गीत सुना उसे गाया है रॉबी उदित राम ने। काला रंग, यह रंग अंधेरे, भय, अनजान वस्तु, शोक, काल, विरोध, प्रेम, भक्ति, भावनाओं की गहराई का प्रतीक है। स्वप्न में कतई शुभ नहीं है। सूरदासकारी कमारी पे चढ़े न दूजो रंग। सुनने वालों, काला रंग यानी कि स्वार्थ कलर, यह अंधेरे का प्रतीक है और हमारे हिंदुओं में काला रंग पहनना शुभ भी नहीं समझा जाता, क्योंकि जब कोई भी नवरात्रे हो, कोई भी हमारा अच्छा कार्य होता है, उसमें काला रंग नहीं पहनना चाहिए। हमें अच्छे कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए, कलरफुल रंग पहनने चाहिए, जैसे लाल, हरा, ब्राउन और भी बहुत अच्छे अच्छे कलर है, सिर्फ काले को छोड़ के।

भूरा रंग, यह रंग उदासी तथा कर्तव्य प्रणता का प्रतीक है। भूरा रंग सुनने वालों, यानी कि ब्राउन कलर, यह उदासी का रंग है। इसे भी कमती, अगर ये सपना दिखाई दिए, सपने में ये रंग दिखाई दिए, तो समझ लो वो भी थोड़ा उदासी वाला सपना है। और सुनहरा रंग, यह रंग धूप और खुशियों का प्रतीक है। सुनहरा मीन्स गोल्डन कलर, हाउट कलर। अगर ये

रंग सपने में दिखाई देता है तो समझो जैसे धूप आती है खुशियाँ लेकर, वैसे अब आपका आने वाला समय खुशियों से भरपूर होगा सुनने वालों।

सुनने वालों, मैंने आपको बताया कि जो रंग है उनका सपने में आना और उसका क्या मतलब होता है। जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। दिल समुद्र जैसा रखना, नदियाँ खुद मिलने आएंगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ संदेश जरूर मिला होगा।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

अपनी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। पवित्र पापी है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए है। आपके पहलू में आकर रो लिए, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अकेले हैं चले आओ जहाँ जहाँ हो आवाज़ दे तुमको कहाँ हो। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का। इसी फिल्म से ये सॉन्ग हम पेश करते हैं, तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे, फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं। ऐ मेरी जिंदगी तू नहीं अजनबी, तुझको देखा है पहले कहीं, प्यार का सपना है फिल्म का नाम।

मेरी जिंदगी तू नहीं अजनबी, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यार का सपना से हमने पेश किए हैं सुनने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी गीत से हम पेश करते हैं आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा।

अच्छा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं रताई तल्लता जी के साथ में, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जिसके सपने हमें रोज़ आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से

जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वो ही तो नहीं। लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए है द टाइटल फ्रॉम द मूवी एंड मिलो सजना से हम पेश करते हैं सुनने वालों, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना।

0: रंग रंग के फूल खिले मोहे भाई कोई रंगना। अब आन मिलो सजना, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आन मिलो सजना। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, फ्रॉम द मूवी सच्चा और झूठा से हम पेश करते हैं।
1: मुझसे

यू ही तुम मुझसे बातें करती हो, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सच्चा और झूठा से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के।

हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी राज्य।

प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से माच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों और हम तुरंत चलते हैं और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा। साधना संगम सरगम है इसमें और फिल्म के नाम है गुथ गर्स खुद गर्स। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

और आप किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोखमाल्स नोखीर बेस्टेल इस्तरात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर कि पूछो जरा पूछो।
1: मुझे क्या हुआ

ये दिल लगाने की सजा है दोस्तों। राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खनती ससन नहीं खन तक का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आज आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यह कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरी।

और ये याद तेरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लॉफर्स के लिए कुछ शायरी है यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामिन से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है।

पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको शुल्क फूलक करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा आम
1: अरे जाम। तो ये बात है दोस्तों
2: गाने को है
1: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो परमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत के ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितने गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं, और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यागनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारा चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्ला था जी, परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालवान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगी। और नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारों, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर, अभी या महिया। अब देखो भैया क्या है,

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे, यानी कि और यहां से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: मेरे दिल की चैन और शहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहा कहा सुना कुछ हुआ क्या?
2: अभी तो नहीं कुछ भी।

और आपको भी कुछ हुआ है नजगिल लता जी? किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमाइश श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।